तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजयोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पई ले निवासा, पाणी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले।

मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाउ जाप।

आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड काश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर एकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद घर मुँह सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग केत मैं सरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ। दोहरा

गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज से ती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरि केरा मन जने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारणा, सबना गलां समर

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे।

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतनाम श्री वाहे गुरु जी, हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले,

गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहु न चाडे खेत। जय श्री महला पंजवा, कोई जन हरस्यों देवे जोर, चरण गहों बकों सुब रसना,

कोई नाव न जान। मेरा वाहिगुरु बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ती आए प्रियंगत गुरु जी अरदास। रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ती आई है जी जिठे सद भजाए तेग बहादुर सिमरिय कारण निदावत आए सब थाए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए सहाय। दसवें पातशाह दी आत्मिक जोत जागती जोत चवर तखत दे मालिक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलना जी वाहे। हे निमाणिया दे माण निताणिया दे ताणी उटियां दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जागती जोत आप जी दे चरणा कमला पास अरदास बेनती जोधड़ी। सतगुरु जी आप जी ने पार बख्शिश कृपा की अमृत वेले तो लैके ऐस वेले तक संगतान खुले दर्शन दीदारे उपदेश बख्शे। सतगुरु जी आप जी का कोटान कोट धनवाद। शामा दे दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पावन पवित्र स्वरूप की सेवा हुई है। सुहेला जी के बाणी के जाप किए गए। सतगुरु जी बाणी पढ़ते हैं आप जी सेवा करते हैं आप जी के सेवका को बेअंत प्रकार त्रुटियां हो जाए। सतगुरु जी आप अपने जान बच्चे सुन के खीमा करना अगे तो सौंप बख्शना। आप जी के भाणे के अंदर चार पहर का दिन सुखा नाल बतीत होया। सतगुरु जी चार पहर की रात्रि आई है सुखा नाल बतीत करावनी। इस वेले आप जी के पावन पवित्र स्वरूप सुगासना ले सचखंड श्री हरिमंदर ले जाने लगे ने। सतगुरु जी रस्ते वाद घाट तो बचा के रखना अपनी सेवा आप लैनी फिर अमृत वेले दर्शन देने की कृपालता करनी। अमृत वेले के जागने इसनान नितनेम बख्शे। सतगुरु जी इस वेले आप जी की सेवा में सिख संगतां ते सेवादार हाजर हैं आप चाले पाने की कृपालता करो जी। सही प्यारे मेर जिन्ना मिले आप जी का नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक हुसी पी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख हो ता एक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जी बुझे ता हूं मैं कह न कोई

टूट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदी तक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाई राहु नानक विकसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाई।

सुनया सटका स्नान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगाओ, सुनया दुख पाप का ना, सुनया सरा गुणा की गाह, सुनया

पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जी को कह पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बहकरन विचार ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पाथ्यो प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुए मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरे तारे गुरसिख मन्ने नानक पवह न पिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गह मानु पंचे सोह दर राजानु पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करते कह करन नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर किता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता हुए किता तान सवाल हो रूप किती दात जाने कौन कूद किता पसाओ एको को आओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे ना जावा एक वार जो तुद पाव है साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार संख जप संख पाओ संख पूजा संख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास संख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातारु असंख सूर मोह पक्षारु असंख मूल लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गाल वड हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ेयार कूड़े फिराहि असंख मलेश मल पक खाहि असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पाव है साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम संख लो असंख कह है सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संयोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जे परमाए तिव ते पाए जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही कोथाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोत उतर सुखे मूत पलीती कपड़ हुए दे साबून लिये ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धुपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कार

मन की तपाऊ अंतर्गत तीर्थ मल नाऊ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ।

पवहै समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरह सिती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत

वारु अंत कारण किते बिललाहि ताकि अंत न पाई जाहि इहु अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे ऊपर ऊचा नाओ इवड़ ऊचा हुए कोई तिस ऊचे को जाने सोए।

अनाद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोय लोय भंडार जो किच पाया सो एका वार कर कर वेख सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक दूजी भव लख हो लख हो वह लख वेश लख लख गेड़

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिसा जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती तिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड कायो धर्म, ज्ञान खंड काया को कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काढ़त घड़ियह रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानु मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़ी है बहुत अनूप, ताकियां गल्ला कतियां ना जाहि, जी को कह पिछे पछताए, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की शुद्ध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर, तिन महराम रहा भरपूर, तिथै सितो सीता महमा माए, ताके रूप न कतने जाए, ना उह मरे न ठागे जाए, जिनकै राम वसै मन माए, तिथै भगत वसै के लो, करे अनंत सचा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जिको कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खलागन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़ियै शब्द सुची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगे आईया।

शफीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसिक हैं, निर्लंब हैं, असंब हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी, अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अदो उर्द अर्दं अगंगो गहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अचेति अपेति अनामंग कामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जो चाचरी छांद, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्तुंग निर्नाते, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो सा साहे, नमो मा माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसीजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चर पट चंत्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अकल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग अलग कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल चंत्व प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त, जौन पुर कपा, सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार, सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल, जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिशाल, नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेत, आद पुरपुदार मूर्त जौन आद अशेख, देश और न पेश जाक रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए पहले अनुराग, नाम काम बहीन पेकता मुह न जाए, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान ताही, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक, देव भेव न जा नहीं जे भेद और कतेब, रूप रंग न जात पासु जाने के जेब, तात मात न जात चाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरती, लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जापा, देवनाद मूर्त थाप्यो सब जे थाप, परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं पव गणन पंचनहार, कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश, धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम।

आप रूपमीक अनुष्टते प्रकृतूत गर्भगंजन सर्वभंजनात रूप सूत अंगहीन अपांगना तुमेक प्रकपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेख सर्वशास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित पाकत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नंगन पो प्रकाश निश्चिन्नाश आजान बाहु सहन साहु राजान राज पानन पान देवन देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंग कालन काल अनुपूत अंग आभा अपांग गतमित अपार गुण गणोदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वापर नाड्य अंडन बाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे कुजंग प्रिया चंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रह न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय दृश्य कृषय भगवती चंद्व प्रसाद किया छिज देशय किया भिज फिसय किया गंज कर्मय किया भंज परमय के आज लोक के आदित्य सो कह के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुपव अनुप है के आदिव है के आपेव है कि चित्रंग वहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हक है कि पाक व्यय व्य के गैबुल गैव्य के फुल गुना है कि साहन सा है के कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान है कि राज करहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कली में कि परमंग सही में कि आकल अलाम में कि साहिब कलाम में कि हुस्नल वजू है तुमामुल रुजू है हमेशल सलाम सली कतमुदा मै गनी मुल शिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजुअल निदान हरिफुल अजीम रजायक यकीन अनेकुल तरंग है अपीत है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विपूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सुदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है चेज है अचूत है के नरकंग प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सुदैवंग सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है अनिचिंत है सुनित है अधिक है अलेख है अपेख है अधिक है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है नित है सुनित है अजात है अजाद है
चारपट छंत्व प्रसाद सर्वघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नर्कनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाते अगात स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बहसुल निवास है के सर्वुल गुवन है हमीशुल रोवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधेशुल अलेख है हमीशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत समाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपांग है मद पार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम हरबर अगंजु हर नर परपंजु अनकन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंड अनपवनाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन पांगु कुमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनपवनाश तर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद कलखंड खयाल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिनागा आज अनछिज गात आज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर गोल मना चंतव प्रसाद करुणालया है अरकालया है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है तृत के करण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जपै थपा थपै कृता कृत्य अमृता मृत्य अमृता मृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तृत्य अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत्य अमृता मृत्य अजपा कृत्य अमृता मृत्य निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है निर्णायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो जो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रया छंद
नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासी अगंजुल नामी समस्तुल निवासी निरकामं व्यपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सो धर्मं व्यपूते सदा सचदानं सत्रं प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय विघ्नि में हरियं करिमुल रही में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते सोयां पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसां स्वासां नाल निभाई इन्हां दी कमाई दा ध्यान।

सुख फल हर जन पावहु। नानक कहे सुनहु जन पाई, सुख सोहेलड़ा हर त्यावहु। सुन हर गुण भिन्नी।

हर गुण गावे त्रिवत अकाही, हर गुण गाए सदा तिबतासी, फिर भूख ना लागे आए। दय दिस पूज होवे हर जन की,

ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिव लाए। सतगुर पुछै सच संजम कमावै, हौ मै रोग तिस जाए। हर गुण गावै गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हौ मै मेट समाए। नानक तिसनो मिलया सदा सुख पाईऐ, जे अन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा, अंदर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीतै हर पुरख न पीजै, नित वेखै सुनै सुपाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै, बिख माया मोह सुआए। इत कमाणै सदा दुख पावै, जम्मै मरै फिर आवै जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचै पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावै हर नामो गावै, हर नामो अंत छिड़ाए। पौड़ी जिना हुक्म मनायो, ते पूरे संसार साहिब सेवन आपना। पूरे शब्द विचार हर की सेवा चाकरी, सच्चा शब्द प्यार। हर का महल तिनी पाया, जिन हों मैं विच्चों मार। नानक गुरमुख मिल रहे, जप हर नामा उरतार। श्लोक महला तीजा, गुरमुख ध्यान सहज धुनि उपजै। सच नाम चित लाया, गुरमुख अन दिन रह रंग राता। हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखै। गुरमुख हर बोलै, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त हुवै, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म हुवै तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्याया। महला तीजा, सतगुरु जिना न सेवेओ, शब्द न लगो प्यार। सहजे नाम न त्याया, कित आया संसार। फिर जूनी पाईऐ, विष्टा सदा खुआर। कूड़ै लालच लगेआ, ना उरवार न पार। नानक गुरमुख उभरे, जे आप मिले करतार। पौड़ी भगत सच्चै दर सोह दे, सच्चै शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी, हर प्रेम कसाए। हर रंग रह सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए। सफल जन्म जिन गुरमुख जाते।

पौड़ी हर कै भाणै गुर मिले सेवा भगत बनीजे हर कै भाणै हर मन वसै सहजे रस पीजै हर कै भाणै सुख पाई है हर लाहा नित लीजै हर कै तख्त बहाली है निज घर सदा वसीजै हर का भाणा तिन मन्या जिना गुरु मलीजै श्लोक महला तीजा।

मन निर्मल हुवै हो मैं विच्चों जाय। वाहु वाहु गुर सिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाहु वाहु करहै से जन सोहणे हर तिन कै संग।

0: पौड़ी।
1: तिस आगे अरदास जिनु पाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाऊ सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक भई अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा।

सज्जन पाहुणे बरसना ता बरस खणा बाहुड़ बरसह काहे नानक तिन बलिहारणै जिन गुरमुख पाया मन मारी महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे प्रगास पौड़ी।

दयाल मनहु ना विसारियन साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माही जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि पौड़ी अकुल निरंजन।

ब्रह्मे तुद ध्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जासु मुखपणा।

पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेसिया किस की गई बिलाए मिटे अंदेसिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन कै संग निहाल पापा मैल धोए अमृत

पहुँच न सकै कोई तेरी टेक जन। गुरपुरे वाहु वाहु सुख लहा चितार मन, गुर पह सिफत

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो, तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दी संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाएं गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज

मन नु जे कोई सकून शांति दे सकता है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुणा दा नाम है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उन्नू भुल जांदा है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे ने। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने, अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाने चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जानदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाने चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुक्र करन दिया, जिन्हें ये विध बनाई उहदा शुक्र करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नू भी ऐसी बख्शिश मिलदी है इंज लगदा है वी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कितों है, सो लगा सतगुरु सेव जाको कर्म तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे बचनां नू जिंदगी विच कमा।

विनती कर दें आप जी के चरणों में। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जिथे देख देख ते धनी हन, सरबन सुदानी हन, खालसा पंथ के सृजनहार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना तो, बिन करतार न किरतम मानो, राग कल्याण पातशाही दसवीं। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री, इदी परचोल 1990 दे विच शुरू होई सी और इनू 2 साल लगे सन लुधियाने विच, दास उदे विच शामिल सी। ए बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नू संभाल सकीए, शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते, जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया, उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए, शायद इस जीवन विच, इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी, सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद।

भाई साहब भाई गुरुदास जी के ये पावन पवित्र वचन भाई साहब भाई गुरुदास जी विद्या मारतंड धन गुरु अर्जन साहब जी के समय जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हो रही थी गुरु अर्जन साहब जी महाराज बाणी लिखवा रहे सन ते भाई गुरदास जी बाणी लिख रहे सन लिखण वाले बाणी लिखवाण वाले गुरु अर्जन साहब जी लिखण वाले भाई गुरदास जी दास जो बचन पढ़न लगा भाई गुरदास जी की बाणी नू घट गाया जाता पढ़िया जाता भाई साहब जी की कलम भाई साहब जी की सोच अदुत्ती सोच है ब्रह्मज्ञानता वाली सोच है ये जड़े वचन हैं कि गुरसिखी उसकी प्राप्ति किवें हो सके उदे की प्रकार एक तो सिख बन जाना है ना जी एक जी सिखी कमाई है असल गल तो यह है रूप भेष बना लेना वो नहीं है भाई साहब भाई गुरदास जी यही समझाना चाहते हैं भाई साहब जी की बाणी ते मोर लगी हुई है गुरु अर्जन साहब जी की सात संगत बोलो श्री मोर सतगुर दी है प्रवानगी इतिहास में बचन आता है कि भाई साहब जी थोड़ी बाणी कुंजी साड़ी बाणी ताला कलयुग के संसार रह के

गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह हक हक आईना, गुरु गोबिंद सिंह खालसो बेकीना, गुरु गोबिंद सिंह। अखीर च जाके लिखते ने कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, सारे आखो मेरे नाल बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। धन नो कलगिया आले साहेब, जिथे छोटी जी उम्र च कहंदे ने पिता जी जे तुहाडा तुहाडे सीस दित्तेआं इन्हां दा धर्म बचदा होवे, अगों ओ आप बच्चियां नूं तोर रहे। किन्नियां सिफतां बणदियां ने कलगी वाले दी। हां जी, 14 जंग लड़ियां ने मेरे सतगुरु ने, 14 जंगां लड़ियां ने, ते एक जंग विच भी सतगुरु हारे नहीं, 14 दियां 14 जितियां ने। बोलो श्री, क्यों है मेरा बादशाह दरवेश, देख देख देता नहीं, सरबंस दानी संत सिपाही संगीतकार, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।